0: वाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सबै कनेक्टेड
1: हमी जन्मदात नहीं सिखारियों सिखारी पूरे टैलेंट मलाई चाहिए
2: VFX सिनेमाज कोराही दश नारायण पुरसौडी कुला दाङमा एक्शन नायक विराज भट्टद्वारा अभिनीत भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ नेपाली कथानक चलचित्र रामना

0: कोकोनट कोकोनट भिटा मिल्क बटर फैट क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर दा स्वी इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागी एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड।
1: नाक कान तथा घाटी रोग उपचार सेवा अब सुपर मेडिकल हल घोराही दांग में।
2: नाक कान तथा घाटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुवर्ण बुढामगर द्वारा प्रत्येक दिन बिरामी चेक जाँच भइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। सम्बन्धित रोगका बिरामीले समयमै सम्पर्क गरी आफ्नो रोगको पूर्ण निदान गर्नुहोस्।
1: अन्य सेवाहरू
3: हात जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण तिमिल सिन्हा द्वारा दैनिक बिरामी चेक जाँच भइरहेको जानकारी गराउँदछौ।
4: सुगर थाइराइड तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर एसएन यादव द्वारा प्रत्येक महिनाको दोस्रो शुक्रबार बिरामी चेक जाँच भइरहेको जानकारी गराउँदछौ।
3: बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दीप पोखरेल द्वारा दैनिक बिरामी चेक जाँच भइरहेको जानकारी गराउँदछौ।
5: प्रत्येक दिन डाक्टर नवराज केसी द्वारा बिरामीहरूको चेक जाँच तथा उपचार सेवा।
6: फोनबाट पनि नाम दर्ता गर्न सकिनेछ।
7: सम्पर्क सुवर्ण मेडिकल हल घोराही 14 आर्मी रोड। सम्पर्क फोन नम्बर 082-561-694। सम्पर्क मोबाइल नम्बरहरू 98-578-30-145, 98-478-30-153 र 98-49-41-944।

मेरा सुस्त चरगम भिस्का तिमीलाई खोजे मैले फल भयो अब ढुक्का यो मन जो तड्पिरहने याद मरोई रोई माया लु खोजिरहने।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंदको आवाज यो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ कोई कसैलाई रोग लागे गोर्खा अस्पताल जाऊ। सर्जन फिजिशियन हार्ट जोड़ने नसा प्रसूति रेडियोलॉजी एनेस्थेसिया बाल रोग थायराइड प्रेसर सुगर छाती मुंडू नाक कान घाटी टाउको।

0: तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायानेट अब सबै कनेक्टेड
1: मध्यपश्चिम टाइम चेक यति बेला बेलुकीको 5 बजेको छ।

राम राम सन्जे 5 बजे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर में शालिकराम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। लुम्बिनी प्रदेश सरकार से चालू आर्थिक वर्ष 2082-83 का असार 25 गते समय कुल बजेट का 67.18% खर्च के राखल। आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय तथा प्रदेश लेखा नियंत्रक कार्यालय से सार्वजनिक करलग प्रारंभिक विवरण अनुसार 38.91 अरब रूपया का कुल बजेट मध्य 26.14,27,94,000 रूपया खर्च हो। चालू हर विनियोजन करगिलक 15.43,85,35,000 रूपया मध्य 10.46,23,14,000 रूपया अर्थात 67.76% खर्च हो रहा। उसका पूंजीगत हर विनियोजन करगिल 23.47,14,65,000 रूपया मध्य 15.67,79,64,000 रूपया अर्थात 66.80% खर्च कैराखल। मंत्रालय अंतर्गत खर्च का विवरण अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय शक्रुन सिद्धिर बजेट खर्च करना मंत्रालय बनल बा। मंत्रालय से 4.5493,73,000 रूपया बजेट मध्य 3.93,15,66,000 रूपया खर्च करती 79.38% वित्तीय प्रगति हासिल कर राखल। दोसरी स्थान मरलक वन तथा वातावरण मंत्रालय से 2.54,74,50,000 रूपया मध्य 1.81,68,40,000 रूपया खर्च कईकन 71.32% प्रगति हासिल कई राखल। सक्रिय से भारी बजेट का भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय से 9.92,45,00,000 रूपया मध्य 7.03,44,20,000 रूपया खर्च करती 77.88% वित्तीय प्रगति कई राखल। दांग गोराई तुलसीपुर सड़क खण्ड अन्तर्गत हापुर खोल्लामा निर्माणाधीन 4 लेन पुल का भौतिक प्रगति 30% खर्च हो रहा 30% हो रहल। पुल निर्माण का काम शुरू हुई करीब 6 महीना का अवधि में 30% भौतिक प्रगति हुई लग हो। कोराई व तुलसीपुर उपमहानगर पालिका का सीमा मरलक हापुर खोला में पुल निर्माण का लाग 2079-79 गते 27.84,31,700 रूपया में शर्मा सगुन जेबी रूपन्देह से ठेक्का समझौता हुई रह। समझौता अनुसार 2082 पुष महीना में पुल निर्माण का काम स्याक पर्ना हुई से फिर ढील काम शुरू हुई पाछ 2 वर्षक लाख म्याद थप करगिल रह। पुल रेक्टर कार्यालय नेपालगंज के इंजीनियर सुरेश चौधरी से पुल निर्माण का लाग म्याद थपल पाछ शुरू हुई पुल का अखि करीब 30% भौतिक प्रगति हुई लग बटवा रखल। इंजीनियर चौधरी के अनुसार निर्माण कंपनी से पुल का 4 ठो पिल्लर मध्य 3 ठो पिल्लर का फाउंडेशन और संरचना निर्माण का

नरूलाल चौधरीका अनुसार हालसम्म नगर क्षेत्रमा 198.2 किलोमिटर सड़क कालोपत्रे करगिल बा उस्ताक 458 किलोमिटर सड़कमा गाभ्रेल ओ स्तरोन्नतिक काम सम्पन्न हो रहल खलसे 280 किलोमिटर लौ सड़क निर्माण करगिल बा यी अवधिमा 68.3 किलोमिटर सड़क मर्मत समेत करगिलक उहाँ जानकारी दिरखल नगर प्रमुख चौधरीका अनुसार सड़क सञ्जाल हन थप व्यवस्थित ओ सहज बनाएकला 2260 कलभट तथा 5 झुलरुङ्गे पुल निर्माण करगिल बा नगर हन सफा स्वस्थ ओ व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ 900 किलोमिटर ढल तथा नाला निर्माण करगिल बा उस्ताक फोहोर मैला व्यवस्थापन हन दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर एकठो सेनेटरी ल्याण्डफिल साइट निर्माण करगिल बा सर्वसाधारण नेपाली हन भारत से आम आनकला रोक लगागिल बा सीमा पारी रूपड़िया से 2 किलो आम लेकन ऐलक सर्वसाधारण हन समेत नेपाल भारत सीमा नाका जमुना हाँसे फिर्ता पठिना करगिल बा तर नेपालगंजक बजार में फरी भारत से आनगिलक आम खुले आम बिक्री हुईतिरल स्थानीय हुक्र बटुआ रखल भारतीय नागरिक से भारत से अनलक आम दैनिक भारी परिमाणमा महँगो मूल्यमा बिक्री करतिरलक उहाँको काहीबाटिन नेपालगंज तथा आसपासको क्षेत्रमा आम उत्पादन न्यून रलक हुँसे स्थानीय उपभोक्ता भारतसे ऐना आममा निर्भरबाट इफ्यारा सीमा पारिसे आम आन निपाइल पास उपभोक्ता महँग मूल्य तिर्कन आम किन बाध्य हुलक गुनासो करलबाट नेपालगंज बजारमा अखि भारतसे आनगिलक आम प्रति किलो 200 से 250 रूपियाँसम्म बिक्री हुइतिरलक स्थानीय हुक्र बटुवा रखल नेपालगंज साथ गगनगंजक नेपाल दिनेश मानन्धरसे रूपडियामा 77 से 80 रूपियाँ प्रति किलो पर्ना आम नेपालगंजमा 200 रूपियाँ से धुर बढ़ीमा किन पर्ना किन परलक बटुवा रखल जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी उपरेक्षक अंगुर जीसीसे क्यारा आम लगायतका रोक लगागिलक वस्तु भारतसे आनकला निदेलक बटुती बजारमा भारतीय आम कसिक पुगलखना विषयमा छानबिन गर्जिना जानकारी दिराखल हुइठा ताजुक थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह काल सन्जाफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन्न सिक्ने बाटी अखसक खबर मसे समाचार कक्षक सक्कु संग्रहणसँग मैं शालिक राम चौधरी विदाही टू रिरी मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद को आवाज यो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ, कोई कसैलाई रोग लागे गोरखा अस्पताल जाऊ। सर्जन, फिजिशियन, हाड़ जोड़नी, नसा, प्रश्न।

0: 94.4 मेगाहर्जमा तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्यपश्चिम।
1: ओखती साबुनको अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल। लामो अनुसन्धान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाकबन्द जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जडीबुटीको शक्ति ओखती आयुर्वेदिक तेल मात्र रु 50 मा।
2: कुराहीको लागि आधिकारिक विक्रेता भूषाल स्टोर हस्पिटल रोड कुराही दान। फोन नम्बर 0825162110। थप सम्पर्कका लागि हिमालय स्टोर बाल मन्दिर अगाडि, निरज स्टोर सब्जी मण्डी नजिक र प्रवेश श्रृंगार दूरसञ्चारदेखि पश्चिम तर्फ।
3: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छाना मुनि।
4: वरिष्ठ हार्ट जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली घोराहीमा।
5: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू:
4: हात खुट्टा भाँचिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, ढाड कम्मर दुख्ने, हार्ट जोर्निङ सम्बन्धी अपरेशन सेवा।
6: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू: वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा,
7: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
8: नशा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्माद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
6: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारीद्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
8: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसीद्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
6: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्यद्वारा भिडियो एक्सरे सेवा, साथै इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इको, कल्पोस्कोपी, सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
3: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली, सडक विभाग ओह्रालो, घोराई दाङ। फोन नम्बर 0825362118।

0: बेस्ट प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अद्गुरी।